0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice. Dina, dina.

0: तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।
1: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आ ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली। I am the advisor.

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
4: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
3: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी 1674 AM।

0: तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी माँ बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: आ

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल,
3: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी,
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
3: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
3: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
2: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
4: दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना प्रीतरपाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। Stan sees baby.

ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी
5: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू ते आखरी भी तू
4: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल।
5: प्यार नु सुनन लई कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी,
4: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
5: एहो गल्लां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाणा।
4: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है।
6: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनू ओ चाहिदा।
4: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल।

0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा भी गूंगा है।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
0: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
3: हां जी, हां जी, ओए हां जी, हां जी,
4: हां जी रेडियो।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
1: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
0: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरिया तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
5: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
4: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 Old G Long Road, Hoppers Crossing, ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਇਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
6: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
7: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरिया तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
3: मेरी जिंदगी छोड़न वाली पहली कुड़ी भी तू है ते आखरी भी तू।
2: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो।

0: संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर
1: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
3: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM कीप लिसनिंग

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Namaskar and welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Last episode में हम लोग बात कर रहे थे कि पैसे का महत्व क्या है और चीजों का महत्व क्या है. For example, कार का या खिलौने का या बचपन में जो मैंने बात की थी पतंग का, कि हम पैसा कमाते कमाते खुशी ढूंढते ढूंढते वो चीज भूल जाते हैं जिससे पैसा नहीं खरीद सकता.
1: क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो खुशी के लिए हैं, तो देन इट वाज एक्चुअली कि खुशी पैसों से खरीदी जा रही थी.
0: और नहीं खरीदे और पैसा ना हो तो
1: वी थॉट विल नॉट बी हैप्पी ना.
0: तो बात तो इवन
1: व्हेन वी से कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बट इफ आई से पैसों से एक दो तीन चार चीजें खरीदी जा सकती हैं और जब ये चार चीजें आएंगी तो मैं खुश होंगी. सो इट इफेक्टिवली केम टू आई वाज बाइंग हैप्पीनेस.
0: दैट्स अ नाइस वर्ड.
1: इट इज इफेक्टिवली कमिंग टू दैट
0: लाइन, बाइंग हैप्पीनेस.
1: आई एम बाइंग हैप्पीनेस एंड व्हिच मेंट कि जब तक ये चीजें मेरे पास नहीं आएंगी आई एम नॉट हैप्पी. क्यों नहीं आ रही? मेरे पास पैसा नहीं है. तो पैसे कमाओ, चीज खरीदो, बी हैप्पी.
0: और जब तक ये सब नहीं मिलेगा आई एम बाइंग अनहैप्पीनेस.
1: वेरी गुड. सो माई डिपेंडेंसी चीजों के ऊपर एंड फिर इक्वेशन. सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वेशन ऑफ लाइफ हैज टू बी सेट राइट. अगर बेसिक इक्वेशन राइट नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जीवन की यात्रा बीत जाए और फर्स्ट इक्वेशन राइट नहीं थी. क्योंकि जैसे आपने लास्ट टाइम शेयर किया, ये तो बचपन से सिखाया गया था. एक वीडियो गेम पेरेंट घर लेके आएगा, बी हैप्पी. नाउ यू आर हैप्पी ना? Now you got this, now you're
0: बाद में बोलते भी हैं, इतना कुछ सब कुछ लेके आया, अभी भी दुखी है, अभी भी रो रहा है, और क्या क्या लाऊं? दूसरे बच्चों को देखो, कुछ नहीं मिलता है, उनके माँ बाप ये सब नहीं करते, मैं कितने महंगे महंगे खिलौने लाता हूँ, फिर भी रोता है.
1: Absolutely. Perfect. तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन कब बनी? राइट फ्रॉम दैट एज. यहाँ तक कि कहीं लेकर गए, घूमने के लिए भी लेकर गए, हॉलीडे पर भी लेकर गए. सो इट वॉज डीप इनग्रेन्ड, वी आर गोइंग देयर so that we will be happy.
0: Sister, मेरी बेटी को एक छोटा सा बच्चा हुआ, वो रो रहा था, तो मैंने उसके पास खिलौना ऐसे टी-टी-टी किया, तो वो उसका ध्यान उधर गया और वो रोना बंद कर दिया. अब मैं ये 2 रुपए का करता या 200 रुपए का करता, उसको एक्चुअली हुआ डिस्ट्रैक्शन, और वो हुआ चंद सेकंड्स के लिए. फिर वो जब उसकी आवाज से बोर हुआ फिर रोने लग गया.
1: दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन. आज हम खुशी के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस में भी लेकर जाते हैं. टीवी देखना, मूवी देखना, शॉपिंग जाना, हॉलिडे के लिए जाना. माय होल लाइफ इट्स सो स्ट्रेस, सो मच वर्क, आई एम सो अनहैप्पी, सो मच टेंशन, लेट मी गो फॉर अ हॉलिडे.
0: और जिस तरह ये डिस्ट्रैक्शन से बोर होकर वापस रोने लगा, वैसे फिर आपकी बात आ गई.
1: तो हमने क्या किया इन चीजों में भी? आप देखो, शाम को घर आकर अगर मुझे रिलैक्स करना है, लेट मी रिलैक्स, तो वेयर इज माई पोजिशन टू रिलैक्स?
0: टीवी,
1: इन फ्रंट ऑफ द टीवी. नाउ देन वी सेड दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, दिस वॉज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस. जैसे आपने कहा, वो थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड को मेरी परेशानियों से डिस्ट्रैक्ट करता, क्योंकि उसके अंदर वो पावर थी कि मेरे माइंड को कंप्लीटली इंगेज कर लेता. तो मन जो सोच रहा था प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ऑफ द डे, किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, ये सब मन पर चल रहा था. जब ये माइंड पर ये थॉट्स चल रही थी, आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग दोज थॉट्स. केम होम इन द इवनिंग, सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी. अच्छा, टीवी डिस्ट्रैक्शन फिर भी ठीक है. स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें क्या आई? मूड ठीक नहीं है ना आज, टेंशन है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है ना, इस टाइम पे मैं एक सिगरेट ले लू ना, मेरा गुस्सा चला जाएगा.
0: एक सिगरेट ले लू, एक पिक्चर देखने चले जाता हूँ, पिक्चर देखने के बाद बार में चले जाता हूँ, बार के बाद डांस पे चले जाता हूँ, सुबह 3 बजे घर आके फिर
1: और कुछ नहीं तो एक हॉलिडे पे चला जाता हूँ. ऑलवेज ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी. डिस्ट्रैक्शन, जितनी देर हम वो करेंगे हमारा मन हमारी प्रॉब्लम से हट जाएगा.
0: बट
1: खुशी नहीं आई है, वो वाली सोच बंद हो चुकी है थोड़ी देर के लिए. What is alcohol doing to me? What is a cigarette doing to me?
0: थोड़ी देर के लिए मन को
1: thought stops, it becomes numb. My conscious layer of thinking has become numb with the substance. या शॉपिंग. आज बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग एक डी स्ट्रेसर है. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, लेट मी गो फॉर शॉपिंग. क्या करेगा शॉपिंग? शॉपिंग कुछ देर के लिए वो सारी जो सोच चल रही थी
0: ध्यान दूसरी तरफ लगा देगा,
1: डिस्ट्रैक्शन.
0: लेकिन छोटे बच्चे पे फिर हम चलते वापस, हमको बाद में पता चला है वो कुछ वो हिलाया, मैंने गिटार बजाया, मैंने चिल्ला के म्यूजिक लगाई, लेकिन उसको समझ में नहीं है. बाद में हमारे समझ में आया छोटी सी बात थी, उसको नींद आ रही है और भूख लग रही है.
1: चीज कुछ और चाहिए, हम चीजें कुछ और दे रहे हैं. वी हैव टू रिमेम्बर, अगर हम अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने दर्द से, यू नो फिजिकल पेन को भी आप देखो, अगर हमें थोड़ा भी दर्द है, आई हैव अ टूथएक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ नी पेन, लेट मी डिस्ट्रैक्ट माय माइंड टू समथिंग एल्स. एक मूवी देखने बैठ जाओ, दर्द नहीं होगा उतनी देर. किसी के साथ बातें करने बैठ जाओ, दर्द महसूस नहीं होगा. यहां तक कि कोई काम जो इंजॉय करते हैं, कि हम जब काम कर रहे होते हैं हमें दर्द नहीं होता कहीं शरीर में. जब काम खत्म हो जाता
0: है, दिन के बाद घर आया, भूख लग रही थी, खुशी खुशी डिशेस बना बना के भाग भाग के दे रहे हैं, फिर जब हो गए खा पी के, अरे मेरे को तो यहाँ दर्द है.
1: एब्सोल्युटली.
0: हमारी शूटिंग में होते हैं हमको फाइट वाइट में मार लग जाती है, घर जाके जब शावर के नीचे जलने लगता है इधर उधर, अरे यार यहाँ चोट कब लग गई थी पता ही नहीं चला, यहाँ दर्द हो रहा है.
1: नाउ वेरी इम्पोर्टेंट, चोट थी उस टाइम भी, चोट थी,
0: महसूस नहीं हुआ,
1: मन उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ.
0: ओके,
1: राइट, द माइंड डिडंट गो टुवर्ड्स इट, सो इट डिडंट फील इट, बट द पेन वाज देयर, दर्द वहां पे था. इसी तरह अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मैं परेशान हूँ, मैंने कहा अल्कोहल ले लो, सिगरेट ले लो, टीवी देख लो, वी सेड दिस इज अ डी स्ट्रेसर. लेट अस अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ डी स्ट्रेसर. इफ इट वॉज अ डी स्ट्रेसर, मतलब वो वाली चीज मेरे स्ट्रेस को खत्म करती. मेरा दर्द वहीं का वहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, दर्द से अपने मन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया. इज इट हेल्दी?
0: कभी कभी हटाते भी हैं और कभी कभी बढ़ भी जाते हैं,
1: लेकिन फर्स्ट इज इट हेल्दी अपने मन को दर्द से हटाना?
0: हेल्दी तरीके से हटाना हेल्दी है?
1: नहीं, इस तरह से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करके अपने मन को दर्द से हटाना, विल इट बी हेल्दी?
0: नो.
1: व्हाई?
0: क्योंकि वो झूठा झूठा आर्टिफिशियल है ना.
1: नॉट ओनली दैट, सपोज मुझे जैसे आपने कहा घुटने में चोट लगी है, सुबह से शूटिंग चल रही है, सुबह में चोट लगी थी, रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो दर्द की महसूसता नहीं हुई, लेकिन रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चोट उतनी देर में
0: बढ़
1: चुकी है. अगर हम अपनी जो चिंता है, परेशानियां हैं, जो वो थॉट्स हैं, अगर हम उन पे वर्क नहीं करेंगे, उनको ठीक करने की अटेंशन नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी चीजों में लगाते जाएंगे, वो जो बीमारी है, वो जो दर्द है, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा. बिकॉज इफ यू डोंट हील इट, इट्स इंक्रीजिंग, यू आर जस्ट टेकिंग योर माइंड अवे फ्रॉम इट. सो ये जो सारी चीजें हैं,
0: जैसे वो बच्चे को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करो, उसकी भूख और लग रही है, और लग रही है, उसकी जो
1: क्योंकि उतना टाइम
0: नींद उसको और आ रही है, और चिड़चिड़ा हो रहा है.
1: आपने क्या किया, आपने आधा घंटे तक उसको वो देने की बजाय
0: कुछ और ट्राई किया,
1: और ट्राई करते गए, और जितनी देर बीच में टाइम गया उतना उसकी वो चीज जो चाहिए थी वो बढ़ता गया. सेम विद माई जर्नी ऑफ लाइफ, पेन है अंदर, दर्द है, मैंने कहा खिलौना ला दो, फिर उसके बाद बड़े हुए मोटरसाइकिल ले दो, ये खुशी देगा, ये खुशी देगा, अपने बेसिक थिंकिंग को उस पर वर्क नहीं किया तो वो जो थिंकिंग है, वो जो चोट है अंदर, वो जो दर्द है अंदर, वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही गया ना. और फिर एक ऐसी स्टेज पे आके पहुंचे, कहते हमारे घर में अब सब कुछ है,
0: सुख शांति नहीं है, हैप्पीनेस
1: नहीं है, दर्द अभी भी वही है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम अपनी खुशी को जहां जहां ढूंढ रहे हैं, सी टू फाइंड हैप्पीनेस, लेट अस फर्स्ट रिमूव ऑल दोज थिंग्स जहां हमने सोचा कि खुशी है. वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर वेयर इट इज, फर्स्ट चेक ऑल दोज थिंग्स वेयर इट इज नॉट वेयर वी थॉट इट इज. ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स, साधन,
0: एडिक्शन,
1: यू नो, जैसे आपने कहा सुख शांति, ये जो हमारे साधन है जीवन के, इनको भी आज हमने टाइटल क्या दिया, सुख सुविधा के साधन. ये सुख के साधन है हमारे, हमने कहा ये सुख के साधन नहीं थे, ये कंफर्ट के साधन थे।
0: लेकिन सिस्टर पहले जमाने में सुख का साधन रेफ्रिजरेटर हुआ करता था 40 साल पहले, अब नेसेसिटी हो गया है।
1: 40 साल पहले भी वो तो सुख का साधन नहीं था,
0: कंफर्ट था।
1: कंफर्ट, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: एसेंशियल हो गया ना
1: तो भी, लेकिन एसेंशियल ऑल्सो फॉर वॉट, फॉर कम्फर्ट। सुख और कम्फर्ट, खुशी और कंफर्ट अलग चीज है। ये हर बार जीवन में हर चीज खरीदते समय जब हम दुकान में जा रहे हैं, आई हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट एम आई बाइंग एंड व्हाई एम आई बाइंग। लेट अस नॉट मेक ऑब्जेक्ट्स आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस
0: एंड इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय राइट नाउ
1: एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, या लेट अस नॉट मेक देम आर स्टेटस सिंबल। वी हैव मेड ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास फोन कौन सा है, फोन का काम है बात करने के लिए, लेकिन ये फोन होगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये ऐसे वाला फोन है इनके पास। तो मैंने ऑब्जेक्ट्स को,
0: आप फोन की बात कर रहे हैं, अभी मैं आ रहा था जब हैदराबाद इस शूटिंग के लिए, तो मेरा स्टाफ बोल रहा था साहब ये तो विवेक जी का स्टाफ लेकर जाता है बैग, आपको शोभा नहीं देता, आप जरा महंगा वाला बैग ले लो। मेरा स्टाफ मुझे सिखा रहा था क्योंकि एयरक्राफ्ट पर एयरपोर्ट लोग देखेंगे, ये उतरेंगे तो कौन सा साहब ने कौन सा वो लाया, कौन सी घड़ी पहनी है।
1: एब्सोल्युटली, तो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या क्या बना दिया, साधनों को, चीजों को हमने क्या क्या बना दिया, और तब क्योंकि उसको हमने स्टेटस सिंबल बना दिया, हमने उसको रिस्पेक्ट का तरीका बना दिया।
0: हाँ, जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा था, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, स्टेटस सिंबल, लेकिन मैं आज भी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं फिर वही आऊंगा कि आज की दुनिया में जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, शो ऑफ, शोमैनशिप की जरूरत, जब सब लोग ये करते हैं तो मतलब सारी दुनिया ही रॉन्ग होगी आपके।
1: अगेन, वी आर नॉट सेइंग रॉन्ग और राइट, इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, इट्स अबाउट क्लैरिटी। इट डजेंट मीन कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो, इट डजेंट मीन कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगे से महंगा मकान नहीं खरीदो।
0: आपको मालूम है हमारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं, यार क्या इस आदमी का स्टाइल है, क्या रॉयल आदमी है, स्कॉच से कम तो पीता नहीं है, बीएमडब्ल्यू से कम तो उतरता नहीं है, पर्स भी लेता तो महंगे में महंगा, शर्ट भी लेता, क्या आदमी रॉयल है, क्या स्टाइल है उसका,
1: स्टाइल
0: तो
1: है
0: उसकी, क्या उसकी इज्जत करते, आते तो खड़े होते हैं लोग,
1: खड़े होते हैं,
0: कोई मैं पैजामा पहन के धोती पहन के चला जाऊं,
1: खड़े होते हैं। अगेन वी सॉ लास्ट टाइम, खड़े होते हैं
0: तो
1: स्टाइल है, अग्रीड, ये रिस्पेक्ट नहीं है।
0: जो भी अच्छा तो लगता है ना,
1: अच्छा लगता है कि आपके लिए लोग खड़े हो रहे हैं, दैट्स फाइन। सी, वी आर नॉट, सी अगेन, वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, वी आर सेइंग
0: सोसाइटी में तो यू आर रिस्पेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड,
1: एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, डिफरेंट वर्ड्स। एक्सेप्टेड मीन्स हाँ, इन्होंने बहुत अचीव किया, उस बात को एक्सेप्ट किया है, आपके व्यवहार, स्वभाव और संस्कार को एक्सेप्ट किया है, आपकी गाड़ी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको एक्सेप्ट किया।
0: आज मैं अपनी बेटी शादी में दूं तो अच्छे स्वभाव और संस्कार खाली देख के नहीं दूंगा, ये देखूंगा, ये देखूंगा इसके कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं। मैं खुद नहीं करूंगा तो आपको फिर मैं क्या बोलूं?
1: अब जब आप ये सब देखकर रिश्ता जोड़ेंगे,
0: बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर, बहुत बड़े पंडित जो सबकी शादियां कराए, सबको डोनेशन करके, घर में कुछ एक छोटी सी हंडी है उधर मैं बेटी दे दूंगा, इतने बड़े संस्कार वाला आदमी है।
1: परफेक्ट, तो आपने डिग्री देखी, लुक्स देखी,
0: गाड़ियां देखी, मेरी बेटी कितना आराम करेगी वो देखा,
1: सब कुछ देखा,
0: नौकर है या सारे दिन किचन में बैठे रहेगी, सब देखूंगा ना,
1: सब देखकर शादी की ना,
0: देखकर ही करूंगा,
1: देखकर ही करेंगे ना। फाइनली जो रिश्ता जुड़ेगा दो लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच, जो रिश्ता जुड़ेगा और कितना सुंदर वो रिश्ता होगा, कितना उनका आपस में संस्कारों में तालमेल होगा, कितना सुखी वो परिवार होगा, कितना प्यार उन दो लोगों के बीच में होगा, गारंटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्स एंड द बंगलोज यू सॉ इन द बिगिनिंग?
0: नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये रिश्ता दुकान में नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं परचेज किया जाता, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
1: अब यही अगर हम थोड़ा सा स्वभाव संस्कार देख लेते उस टाइम, हम किस से शादी करें।
0: फिर ध्यान में क्यों नहीं आती ये बातें?
1: क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइफ, अगर मेरी बेटी जिस घर जाएगी वहां अगर गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा, उस घर में अगर सारी चीजें होंगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी।
0: नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इतने ऐसे परिवार मालूम है जहां पर डिवोर्स ही हुआ है।
1: इट्स नॉट ऑल्सो कि अगर ये सब
0: नहीं, रिचनेस देख के किया, पैसा देख के
1: किया। इट्स नॉट कि रिचनेस इज नॉट राइट। रिचनेस इज ब्यूटिफुल। इट्स ब्यूटिफुल टू हैव मनी, वेरी नाइस, बट डोंट से मनी फॉर हैप्पीनेस। पैसा होना आपके पास है, इट्स ब्यूटिफुल। आप दुनिया की सबसे महंगी चीज खरीद सकते हैं, ब्यूटिफुल, लेकिन खरीदते समय ये अपने आप से नहीं कहना कि दिस ऑब्जेक्ट इज गिविंग मी हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट।
0: एक छोटे मोटे शायर ने एक लाइन बोली थी, उसने बोल दिया, पैसा तो खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम तो खुदा से कम भी नहीं। तो उसने इक्वेट कर दिया पैसे को खुदा से,
1: क्योंकि
0: और हिंदी में भी बोले लक्ष्मी पूजा, तो ऐसे ही सब बन गए, मतलब इतनी।
1: लेकिन अब चेकिंग करनी है ना, अब अपने जीवन की चेकिंग करनी है। अगेन, सब लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इट टू दैट। लेट मी सी माई क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय,
0: बट
1: वाई एम आई नॉट हैप्पी टूडे? Each of us can sit back and ask themselves, I have everything that money can buy.
0: इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिस्टर मेरी गुरु के पास मैंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को झुक कर माथा टेक कर भीख मांगते हुए देखा है अपनी आंखों से कि मुझे गुरु जी मुझे सुख शांति दो, मैं खुश नहीं हूँ। अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं, सब कुछ रखते हुए खुश क्यों नहीं है? मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब दरिद्रता में है, जीरो मनी में है, उधार में है, परेशान है, उसके बाद भी तो नहीं है ना सुख शांति?
1: इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, विच मीन्स ये दोनों चीजें अलग अलग हैं।
0: दोनों एक्सट्रीम्स हैं?
1: नहीं, एक्सट्रीम्स नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं।
0: तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है?
1: ये दो अलग चीजें हैं। फर्स्ट लेट्स लुक एट इट, ये दो अलग चीजें हैं। एक चीजें हैं जड़, सारी जड़ चीजें हैं जो पैसा खरीद सकता है, सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इस जीवन में की, वो एक साइड है, लेट्स टेक इट एज वन साइड। दूसरी साइड है माय होल लिस्ट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, माय वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें आपने जैसे कहा सुख शांति, लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये एक लिस्ट है। वी आर नॉट सेइंग कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं होगी, या जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुशी होगी। इट इज जस्ट दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स।
0: अच्छा,
1: ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये ना सोचें कि ये वाली लिस्ट आ जाएगी तो ये वाली भी लिस्ट आ जाएगी। हमने सिर्फ वो छोटी सी की गड़बड़। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
0: हमारी। कौन सी लिस्ट, प्लीज बताइए?
1: एजुकेशन, अचीवमेंट्स, all the products that I have bought, this is one list. Happiness, love, respect, peace of mind, this is one list. We just have to remember these are two different lists. ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने क्या कहा, ये आएगा, चीजें आएंगी, अचीवमेंट आएगी, प्रोफेशनली आई विल डू वेल, अचीव करियर में मैंने बहुत ज्यादा किया, तो ये लिस्ट अपने आप आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, लोग मुझसे प्यार करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने कहा ये लिस्ट आएगी तो ये वाली लिस्ट अपने आप आ जाएगी। तो हमने अपने जीवन में मेहनत सारी कौन सी लिस्ट पे की? इस वाली लिस्ट पे। यू नो, इट्स लाइक हैविंग टू गार्डन्स, एक हमारे घर के आगे, एक हमारे घर के पीछे। तो ये दो गार्डन है हमारे जीवन के, दो गार्डन है। एक है भौतिक, जिसको आज लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ, it's a very important part of life. Materialistic means matter, everything that is outside me, materialistic. One is the spiritual side of life. What is the spiritual side of life? Everything that is inside me. Materialistic, everything outside achieved. Spiritual, everything inside. Right? To kehte hain materialistic life jab se ho gayi na tab se khushi gum ho gayi. Not true, not true at all. किसी के लिए कहेंगे ये बहुत मटेरियलिस्टिक है. मीन्स इट्स नॉट राइट. नो इट्स नॉट ट्रू. इट्स गुड टू बी मटेरियलिस्टिक. यू शुड हैव एवरीथिंग. आप जितना खरीद सकते हैं यू शुड हैव एवरीथिंग विद द क्लैरिटी. ये एक गार्डन है मटेरियलिस्टिक. ये दूसरा गार्डन है सुख शांति खुशी. हमने क्या कहा, इस गार्डन को पानी देंगे
0: तो ये अपने आप ग्रो हो जाएगा.
1: अपने आप ग्रो हो जाएगा. तो हमने अपने दिन के 24 घंटे किस गार्डन में बिताने शुरू कर दिए.
0: मटेरियलिस्टिक
1: ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है.
0: उसको हमने इसका रिजल्ट मान लिया. ये करने से वो
1: ये हो जाएगा. हाँ, हमने सोचा इधर मैं पूरा दिन बिताऊंगा ना इस गार्डन को सुंदर बनाने में, तो मेरा ये गार्डन तो अपने आप हो जाएगा. लोग मुझसे प्यार करेंगे, खुशी आ जाएगी, विश्वास होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी सबसे. हमने ये गार्डन पर ध्यान नहीं दिया.
0: क्या करें, बात
1: अब रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ये गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया है. आज आप देखो हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा आगे वाला गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया. जिस गार्डन पर ध्यान दिया, दिस इज अ लॉ, स्पिरिचुअल लॉ. वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. वेर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो. आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे आपकी पूरी ऊर्जा वहां जा रही है. जहां आपकी ऊर्जा जाएगी वहां अपने आप चमत्कार होने लगेंगे. आज हमने चमत्कार कर दिए हैं दुनिया के अंदर. हम स्पेस में जा सकते हैं, हम सागर की तलों में जा सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं. अटेंशन वेंट देयर, एनर्जी वेंट देयर, वी क्रिएटेड मिरेकल्स. अपने अंदर खुशी क्रिएट करनी है, शांति क्रिएट करनी है, वो नहीं सोचा, क्योंकि हमने सोचा ये करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा. तो उस गार्डन पे अटेंशन नहीं दिया. अटेंशन डेंट को एनर्जी डेंट फ्लो, और वो वाला गार्डन क्या हो गया.
0: क्या करेंगे, जो आप बोल रहे हैं अब इस वक्त सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो द नंबर वन प्रोड्यूसर्स, नंबर वन एक्टर्स, नंबर वन डायरेक्टर्स, नंबर वन म्यूजिक के लोग अकेले घर में बैठे रहते हैं. जब उनकी पिक्चरें नहीं चलती फेल हो जाते हैं, और जब पैसा नहीं कोई पूछ, जहां चलता वहां जाते, तो उसको लोग दैट इज देयर हैप्पीनेस. तो लाइफ
1: तो वो ठीक नहीं, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट इज द फ्रंट गार्डन.
0: और जब घर पे लोग आना बंद करते हैं, फोटोग्राफर्स फोटो खींचना आपके छोड़ देते हैं, आपके पास कोई आके आर्टिकल्स आपके नहीं लिखता है, तो इधर के गार्डन में है कि कौन से गार्डन में है, वो कहां जाए,
1: पीछे वाला गार्डन.
0: इसलिए देखिए पॉन एंड ऑन उसी को पानी डालते रहते हैं,
1: उसी को पानी डालते रहते हैं ना. और पीछे वाला गार्डन सूख रहा है ना.
0: पीछे वाले गार्डन को कोई देखता है क्या?
1: देखता नहीं ना.
0: मैं खुद नहीं जाता वहाँ.
1: हाँ, तो अब पीछे वाले गार्डन को नहीं ध्यान दिया, तो फिर इवन व्हेन आई हैव एवरीथिंग व्हाट डिड आई से, यू सेड आई एम नॉट हैप्पी. एंड देन बाय चांस, जैसे आपने कहा, अचीवमेंट में भी अगर कुछ कम हो गया, तो जब आगे वाला गार्डन सूखा हुआ थोड़ा सा मिला,
0: तो रिजर्व में पीछे भी खाली पड़ा है.
1: नाउ नाउ लेट्स लुक एट द अदर वे.
0: ये पॉइंट अच्छा है. आगे सपोजिंग जब खाना पीना है सब खत्म हो गया, तो पीछे जो हमने स्टॉक में रखा है नहीं कुछ के संभाल के, वहाँ अपन उस गार्डन में बैठ के आराम करें,
1: नहीं कर सकते ना?
0: अगर उस गार्डन में मैं राजा हूँ, तो यहाँ के राजा में इतना राज हार भी जाऊं, तो ये राज उसके हवाले करके वहाँ वापस राजा बन सकते.
1: ब्यूटिफुल ना. अब इसमें देखो, आगे वाले गार्डन में मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, पीछे वाले गार्डन में खुशी कॉन्फिडेंस,
0: ठीक लग, बहुत
1: खुशी कॉन्फिडेंस पावर ट्रस्ट रिस्पेक्ट. ये मेरा पीछे वाला गार्डन है. मेरा आगे मटेरियल गार्डन मुझे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है, बट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मेरे मटेरियल गार्डन को स्ट्रॉन्गर बना सकता है.
0: और मटेरियल गार्डन नष्ट भी हो जाए तो वह सुख शांति मुझे दे सकता है.
1: आई एम स्टिल हैप्पी.
0: हाँ, सुख शांति स्पिरिचुअल गार्डन दे सकता है, ये गार्डन सुख शांति
1: खुशी
0: नहीं दे सकता,
1: क्योंकि ये बाहर है.
0: थोड़ी समझ,
1: ये चीजें बाहर है. स्पिरिचुअल अगेन डजंट मीन सम अदर थिंकिंग. यू नो सम पीपल से ओ व्हाई डिड यू गो इन द स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स नॉट अ डिफरेंट लाइफ. इट्स
0: स्पिरिचुअल मतलब ये तो नहीं ना माला लेके सारा दिन जपते रहना.
1: एक है जो चीजें बाहर हैं और एक है वो चीजें जो अंदर हैं. खुशी एक फीलिंग है, लव फीलिंग है, रिस्पेक्ट फीलिंग है, कंटेंटमेंट फीलिंग है, विल पावर फीलिंग है, ट्रस्ट फीलिंग है. स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, आत्मा की ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये अंदर है. नॉलेज अचीवमेंट डिग्रीज पोजेशन प्रॉपर्टी रिलेटिव्स बाहर है.
0: ये फीलिंग्स है और वो फिलिंग है.
1: हाँ, स्वीट. हाँ, yes.
0: इससे खोखलापन आता है, इससे भरता जाता है.
1: उससे खोखलापन भी नहीं आता. सी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक पॉइंट.
0: खोखलापन नहीं बोल रहा, उससे वॉइड जो आप बोल रहे थे, सब कुछ रखते हुए भी अशांति नहीं आ रही है.
1: right.
0: मेरे गुरु के पास लोग जाते हैं, पांव पड़ते हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को सुख शांति नहीं है, उसको मैं शब्द को खोखलापन
1: like
0: या वो वॉइड, वो खालीपन, वो जब बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ फीलिंग बता रहा हूँ. वहाँ फीलिंग है.
1: लाइक यू सेड कि सब कुछ है, मतलब मेरा सामने वाला गार्डन इज फ्लरिशिंग. फ्लरिशिंग मतलब अब कोई रह नहीं गई चीज जो मैं उस गार्डन में ग्रो करूं, सब कुछ आ गया. अब मैं पुराने वाले, पीछे वाले गार्डन पर गया, क्योंकि उसको मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया था,

0: होनी चाहिए। ये गार्डन भी इम्पोर्टेंट है, ये गार्डन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटे अगर इस गार्डन में बिताते हैं कि वॉट ऑल आई हैव टू डू डू डू डू डू द होल डे, आई हैव टू डू ऑल दिस, 24 घंटे अगर ये गार्डन में बिताते हैं सिर्फ सारा कुछ बाहर करते हुए, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ हाउ आई एम बीइंग व्हाइल डूइंग, फर्स्ट वी सेड व्हेन आई डू इट आई विल बी, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट लिटिल बिट एंड चेंज द वे वी आर गोइंग टू लिव हाउ आई विल बी व्हाइल डूइंग इट। एक था ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी, नाउ वी विल गो ऑन अ जर्नी एंड से व्हाइल आई एम हैप्पी नाउ आई एम डूइंग दिस। मतलब इस गार्डन का ध्यान रखते हुए अब मैं इस गार्डन का ध्यान रखूंगा। तो मेरा जो ये गार्डन है, माय इंटरनल गार्डन, इफ दिस इज ऑलवेज स्ट्रांग, तो अगर मेरा जो आउटर गार्डन है ऑफ अचीवमेंट्स, उसमें अगर कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ भी जाए, मेरी खुशी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा पीछे वाला गार्डन हमेशा स्ट्रांग है, अब इसमें सेटिस्फैक्शन इस बात की है कि जो ये बाहर वाला गार्डन है ना, ये परिस्थितियों और लोगों पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो ये पीछे वाला गार्डन है ये सिर्फ एक के कंट्रोल में है, परिस्थितियां और लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है।
1: एक के कंट्रोल में मतलब
0: मेरे अंदर का जो गार्डन है वो किसके कंट्रोल में है?
1: एक मीन्स
0: में आई
1: सिस्टर, एक मीन्स मैं। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, मुझे इस पे आपसे बात करना है, मैं अगले एपिसोड में जरूर करूंगा। और इस बार समय बीतता जा रहा है तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार एंड ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: टीवी, शॉपिंग, हॉलिडे, स्मोकिंग और एल्कोहल इज नॉट अ डिस्ट्रेसर, इट इज ओनली अ टेम्पररी डिविएशन फ्रॉम द पेन। The emotional wound of stress, anger or hurt gets deeper because instead of healing it, we are distracting our mind away from it. Achievements and possessions can get us regard, not happiness and respect. Regard is an outer gesture and respect is a feeling for what the person is. Possessions give us comfort. Physical comfort is different from emotional comfort. Happiness, peace and love is our internal creation and can be created irrespective of external comforts.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ जी हाँ जी 1674 ये नहीं है 71-72 ये है 1674 ये है 1674 सुनते रहो सुनते रहो। हाँ जी
1: ए यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: बुरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूं सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू है आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। RB Toyota, the smart choice.
4: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. Sunte rahiye, sunate rahiye, bajate rahiye, jo karna hai kariye.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी 1674 AM 24